सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त नत वत्सल सर्वशेषिन् स्वामीं सुशील सुलभाश्रुत पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन् कृपाजल निधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त नत वत्सल

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। रेखामयध्वज सुधाकलशात पद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेंकटेश चरणौ।

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

काय वाचून खचित खचित देते प्राण, दुःख दारुण कंठवेना, तू कन्या वत्सल असोनी पिता, विवाह विधी न करिता।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

आजकल बड़े दुख की बात है कि अंतरे का विस्तार भूलते जा रहे हैं लोग। बहुत से लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अंतरे की जरूरत क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद मालूम नहीं है कि सिर्फ शर्ट पहन के निकल जाए तो क्या हालत होगा। संचारी आभोग तो जा चुका है, अंतरे को भी भूलने पे लगे हुए हैं। लेकिन अंतरे की उपज वही गाएगा, वही बजा सकता है जिसको तालीम हो। अस्थाई सब लोग बरत सकते हैं, अंतरा बरतना बहुत मुश्किल है।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत
1: बोल साचे।

सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त नत वत्सल सर्वशेषिन् स्वामीं सुशील सुलभाश्रुत पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन् कृपाजल निधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त नत वत्सल सर्वशेषिन् स्वामीं सुशील सुलभाश्रुत पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये आनूपुरार्पित सुजात सुगंधि पुष्प सौरभ्य

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशात पद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेंकटेश चरणौ

श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये लक्ष्मीमही तदनुरूप निजानुभाव नीलादि दिव्य महिषीकर पल्लवानाम् आरुण्य संक्रमण तक्किल सान्द्र रागौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम्।

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ।

वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साँचे।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।